शहर के लिए ही तराशे गए थे जिनकी तामीर इसी जगह शुरू हुई थी, क्योंकि यह तय पाया था कि यह सेमेक में ना सिर्फ मुजस्मे बल्कि तामीराती अनासिर भी बनाए गए थे। इस बारे में अनमोल मालूमात पेश करता है कि पत्थर के ब्लॉक्स कैसे काटे गए, मुजस्मे के खाके कैसे तैयार और मुकम्मल किए गए। कान से शुरू होकर यह सेमेक को दुनिया में एक मुनफरिद मकाम के तौर पर बयान किया गया है, जहाँ हर एक कायनात को एक एक करके देखा जा सकता है, जिसे हम उस दौर के मुजस्मा साजी के फन की तरक्की को भी समझ सकते हैं। ये सब एक इस बात का इशारा है कि किस तरह हदीती फन के साथ जुड़े हुए थे। मुजस्मों की इतनी बड़ी तादाद के लिए बहुत से मुजस्मा साजों का होना ज़रूरी है, और ये एक बार फिर इस अहमियत को जाहिर करता है जो हदीतियों ने फन को दी थी। यह समय अपने बहुत से मुजस्मों के साथ लोगों को एक पुरसरार और मुतासिर कुन माहौल में मधु करता है। वो मुजस्मे जो माजी की गवाही देते हैं, मुस्तकबिल पर निगाहें डालकर अपने आने वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप उनकी खामोशी को सुनेंगे तो आप उन्हें कदीम ज़माने की अनोखी कहानी सुनाते हुए पाएंगे। सामिन, आज हमने एक दूर दराज की कहानी सुनाई, हतीतियों के आर्ट सेंटर और मुजस्मा साजी की वर्कशॉप यसेमेक के बारे में आपको बताया। नस्ली खान देरमैन जी ओलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

है जिसके तहत मकबूजा तमाम लबनानी इलाकों से इसराइल के बतदरीज इनखला की बात कही गई है। एक लुबनानी फौजी एहलकार ने AFP को बताया है कि एक अमरीकी फौजी वफ्द ने बैरूत में लुबनानी फौज के हुकाम से मुलाकात की ताकि मकबूजा इलाकों में वाकई एक पायलट जोन से इसराइली इनखला के अमल के नफाज पर बातचीत की जा सके।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान के जजीरा किशम के शुमाल में एक बहरी तसादुम में शदीद नुकसान उठाने वाले बल्क कार्गो जहाज से 23 मल्लाहों को बहाफाजत निकाल लिया गया है। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आज बरोज मंगल एक बहरी तसादुम के नतीजे में 23 रुकनी गैर मुल्की अमले वाले कार्गो बहरी जहाज के दरमियानी हिस्से को शदीद नुकसान पहुँचा और जहाज में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। जहाज के कप्तान ने अमले को फौरी तौर पर जहाज खाली करने का हुक्म दिया, जिसके बाद तमाम मल्लाहों को कामयाबी से बचाकर जजीरा किशम मुंतकिल कर दिया गया है। खबर के मुताबिक जुनूबी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास के हुकाम को मंगल को अलसुबह इस तसादुम की इत्तला मिली, जिसके बाद फौरी तौर पर बहरी इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुतासर जहाज की मदद और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सुबह हुरमुजगान के मैरी टाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के ताउन से एक पायलट कश्ती और एक टक कश्ती रवाना कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात से मालूम होता है कि बल्क कार्गो जहाज समंदर में एक दूसरे जहाज से टकरा गया था, ताहम हुकाम अभी तक हादसे की असल वजह का तायुन नहीं कर सके।
2: यूक्रेन और नौ यूरोपीय इतिहादियों ने मिसाइल दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यूक्रेन ने नौ शराकत दार ममालिक के साथ रजामंदों का इतिहाद नामे एक नया मुश्तरका मिसाइल दिफाई इतिहाद तश्कील दिया है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, यूक्रेन और बरतानिया के सरबराहान ने इस इतिहाद को खालिस दिफाई इकदाम करार दिया है। इतिहाद का मकसद दरपेश खतरात को रोकने और बेअसर बनाने का अहल एक मजबूत दिफाई नेटवर्क तश्कील देकर यूरोप की हिफाजत करना है। इतिहाद का बुनियादी मकसद फ्लैगशिप मंसूबों के जरिए मुश्तरका मिसाइल दिफाई निज़ाम की तरक्की को तेज़ करना और सबका फाल दिफाई नेटवर्कों को ऑनलाइन लाने के लिए तकनीकी मीयारों और ऑपरेशनल मनसूबों को बाहम हम आहंग करना है।
1: शुमाली कब्रस से तुर्क जमहूरिया ने यूरोपी कमीशन की जानब से कमीशन के नायब सदर रफ़ाइल फ़ीतो को कब्रस के लिए खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने पर तनकीद करते हुए इस इक़दाम को नाकाबिल कबूल और जानबदाराना करार दिया है। शुमाली कब्रस की वजारत खारजा ने गुज़श्ता रोज़ जारी करदा एक बयान में कहा कि यह तकर्री तुर्क कब्रसी फरीक की रजामंदी हासिल किए बगैर और तुर्क कब्रसी आवाम को यकसर नज़रअंदाज करते हुए की गई है और यह एक इश्तियाल अंगेज़ कदम है। वजारत ने वाज़ किया कि यूरोपीय यूनियन का यह फैसला कब्रस के मसले पर उसके जानबदाराना रवैये को एक बार फिर वाज़ करता है और मुस्तकबिल का कोई भी हल दोनों फरीकों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर कायम होना चाहिए। शुमाली कब्रस की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन, जिसने तुर्क कब्रसी अवाम के फितरी हकूक और मफादात को पसे पुश डालकर 2004 में जनूबी कब्रस को यूनानी इंतजामिया को यकतरफा तौर पर रुकनियत दी थी, कब्रस के मामले पर अपनी तमाम तर गैर जानबदारी और साख खो चुकी है। वो एक बार फिर नुमाइंदा मुकर्रर करके जजीरे पर मौजूद हसास सियासी तवाजुन को नज़रअंदाज करने वाले रवैये को जारी रखे हुए हैं।
2: इस साल चीन के मरकजी हिस्से से टकराने और शदीद बारिशों और वसी पैमाने के सैलाब का सबब बनने वाले ताकतवर तरीन तूफान बावी ने शुमाल मशरकी सूबे लियाओनंग में 260,000 से ज्यादा अफराद को अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। चीन महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बाज़ इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि तूफान बावी अपने साथ भारी मकदार में इस्तवाई नमी को शुमाल की जानब ले आया है, जिसके बायस शुमाली चीन में मुसलसल मरतूब हवाएं चल रही हैं। गुज़श्ता दो हफ्तों के दौरान बावी तूफान ने चीन के वसी इलाके को मुतासिर किया है। मुतासरा इलाकों में शदीद बारिशों और बड़े पैमाने पर सैलाब के बायस एक डैम टूट गया और शहरी बुनियादी ढांचे को मुख्तलिफ नौयत के नुकसान पहुंचे हैं।
1: 200 से ज्यादा माहरीन इक्तसादियात ने मस्नूई ज़हानत से रोजगार के मौके को लाहक खतरे के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जारी करदा और 16 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों समेत 200 से जायद माहरीन मुआशियात और मस्नूई ज़हानत के महक्कीकीन के दस्तखतों वाले एक खुले खत में आलमी इदारों को खबरदार किया गया है कि उनका फौरन हरकत में आना ज़रूरी है। माहरीन का कहना है कि मस्नूई ज़हानत एक ऐसी बेमिसाल तब्दीली लाने के लिए तैयार है जो अपने पैमाने और रफ्तार के लिहाज से सनती इनकलाब से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। अगरचे यह टेक्नोलॉजी गैर मामूली मुआशी तरक्की का वादा करती है, लेकिन अपने साथ संगीन खतरात भी लिए हुए है। इन खतरात में सबसे नुमाया खतरा

0: और लीजिए सामिन, अब एक गीत आपकी समातों की नजर करते हैं। गीत के बोल हैं ख्योर पिचक और गाया है यशार ने।
1: Bir gün artı, bir gün daha, bir gün artı, her gün daha.

0: सामीन, अगर एक बूढ़ा अमेरिकी केमिकल इंजीनियर अपने नौजायदा पोते का डायपर बदलते हुए थक जाए और उसका हल तलाश करे तो क्या होगा? इसका जवाब होगा कि हाँ, अगर वह दुनिया की सबसे मशहूर हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह हैं तो वो इस मसले को हल करने के लिए अपने पूरे अमले को मुतहरक कर सकते हैं। हकीकत के तौर पर यह हुआ भी, और एक ऐसी प्रोडक्ट सामने आई जिसने मैन्युफैक्चरर्स को उस दिन से अरबों डॉलर मुनाफा देना शुरू कर दिया। आजकल हम इस प्रोडक्ट को डिस्पोजेबल डायपर्स कहते हैं। विक्टर मिल्स एक केमिकल इंजीनियर जो 1897 में अमेरिका में पैदा हुए और दुनिया की सबसे मशहूर हेल्थ प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करते थे, वो शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी थी। मिल्स की बेटी काम करती थी, लिहाजा अवाखिर हफ्ता वो अपने नौजायदा पोते की देखभाल करते थे। इस वजह से उस दिन के वक्त अपने पोते का डायपर तब्दील करना पड़ता था, लेकिन वो देखभाल के इस हिस्से से खुश नहीं थे। मिल्स ने अपनी परेशानी का अपने साथियों के साथ जिक्र किया। अगरचे इत्तफाक से एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके जहन में आया जिसे एक घरेलू खातून ने 10 साल पहले मुतारिफ करवाया था, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उसने उसे मुस्तरद कर दिया। 1946 में घरेलू खातून मैरियन डानोविन ने पहला वाटर प्रूफ डायपर ईजाद किया और उसे मिल्स ने बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए काम करने वाली कंपनी को तजवीज़ किया, लेकिन कंपनी के मालकान इस ख्याल में सरमायाकारी नहीं करना चाहते थे। एक और डिस्पोजेबल डायपर डिज़ाइन वैलरी हंटर गोर्डन ने सोचा था और उसे 1948 में पेटेंट किया गया था, लेकिन यह भी बड़े पैमाने पर तैयार नहीं हो पाया। उन सालों में अमेरिका में काम करने वाली खवातीन की तादाद कम होती थी और घरेलू खवातीन सूती कपड़े से बने लंगोट को ही तरजीह देती थीं, जिन्हें हर बार धोया और खुश्क किया जाता था। दूसरी जंग अजीम के साथ ही खवातीन मुलाजमीन अमरीकी जंगी सनत का हिस्सा बन गए और जंग के बाद मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में अचानक इजाफे ने, जिन्हें तारीख में बेबी बोमर्स कहा जाता है, एक नई ज़रूरत पैदा कर दी। विक्टर मिल्स का हदफ ये सार्फीन था, वो खवातीन जो काम करती हैं और उनके बहुत से बच्चे भी हैं। डिस्पोजेबल डायपर प्रोजेक्ट के लिए अपनी तहकीकी टीम को मुतहरक करते हुए मिल्स ने बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल की और इस बार इस कंपनी को इस प्रोडक्ट में सरमायाकारी के लिए कायल कर लिया। कागज से बने इन बच्चों के लंगोट ने शदीद तशहीरी मुहिम के तआवुन से खसूसी तवज्जो मबजूल करवाई। पहले दिन से नौजवान और काम करने वाली माओ ने तकरीबन सुपरमार्केट की शेल्फों को लूट लिया, यहाँ तक कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव जिनको प्रोडक्ट के बारे में शकूक व शुभात थे उन्होंने मिल्स की कामयाबी को सराहा। लेकिन चंद महीनों के बाद फरोख्त में संगीन कमी आना शुरू हो गई, जिससे ये जाहिर होता था कि उनसे कहीं गलती हुई है। उन सालों में कंपनी की इंतजामिया ने मुल्क के मशहूर माहिर नफ्सियात और ब्रांड मैनेजर्स में से एक विलियम कैसन की मदद ली और कैसन की तहकीकात के नतीजे में उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने इश्तिहारी मुहिम में नारे में गलती की थी, ना कि मसनूआत में। तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल किया गया नारा आरामदेह और खुश माँ का रद्द अमल हुआ, जिसमें डिस्पोजेबल डायपर इस्तेमाल करने वाली काम करने वाली खवातीन को खुद गर्ज माओं के तौर पर पेश किया गया, जो अपने आराम का ख्याल रखती हैं और अपने बच्चों को नरम रुई के लंगोट के बजाय कागज़ से ढांपती हैं। इस सूरत हाल ने काम करने वाली माओं में एहसास जुर्म पैदा किया और फरोख्त में तेज़ी से कमी आई। कंपनी ने फौरी तौर पर एक नई मुहिम शुरू की और अपने नारे को आपके बच्चे के लिए आराम के लिए के अल्फाज के साथ तजदीद किया। एक नए नारे और इश्तिहारी मुहिम ने डिस्पोजेबल डायपर की तकदीर बदल दी और अमरीकी खवातीन ने शेल्फें दोबारा खाली करना शुरू कर दी। डिस्पोजेबल डायपर यूरोपीय ममालिक में खवातीन की पहली पसंद बन गए। सामीन, एक ऐसी प्रोडक्ट की कामयाबी के पीछे जिस पर हम सब बेबी डायपर के तौर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जिसने अपने आगाज़ से ही अरबों डॉलर की मार्केट को अपनी तरफ रागिब किया, इस मसले का हल तलाश करने में मुजीद दादा की जिद थी, जो अपने पोते का लंगोट बदलते हुए थक गया था। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: इजादा।